0: हेलो जमी राहुल आ गया अपनी एंट्री पॉइंट पर।
1: नहीं राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे बॉबी भी राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद उसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
1: ओह गॉड मैं अभी आया।
0: श्रुति श्रुति राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।